पहला मारूफ मस्नूई मादनी पानी 1741 में बरतानवी डॉक्टर विलियम ब्राउन रेग ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नलके के पानी में मिलाकर हासिल किया था। यह बोतल का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के असर से ढक्कन खोलने पर फूल जाता था और पीने पर मेदे में हल्का सा आराम पहुंचाता था। लेकिन बरतानवी डॉक्टर की यह दरियाफ्त ज़्यादा तवज्जो ना मबजूल कर सकी क्योंकि उसने नल का गंदा पानी इस्तेमाल किया था। इन्हीं सालों में बरतानवी कीमियादान जोसेफ प्रेसले, जो कीमिया के शोबे में काम कर रहे थे और इस मकाले को साबित करने की कोशिश में थे कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो मुख्तलिफ गैसों का मुरक्कब है, अपने साइंसी तजुर्बात के लिए अपने घर के करीब एक शराब खाने में वो ठहरे। एलन प्रेसले अक्सर शराब खानों में जाते थे। उन्होंने बियर के उबाल के अमल के दौरान खारिज होने वाली गैसों को इकट्ठा करके तजुर्बा किया। इत्तफाक से दरियाफ्त किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में तहलील हो सकती है। प्रेस्ली, जिसने यॉर्कशायर शहर के चर्च में एक पादरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी और अपने अकायद की वजह से अल्कोहल वाले मशरूबात से वो दूर रहते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक खुशगवार, जायकेदार और जरासीम से पाक मशरूब बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। बीमार होने पर प्रेस्ली ने पहले नल के पानी को उबाल कर जरासीम से पाक किया, बोतल में भरे हुए पानी में कुछ मादनियात शामिल किए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंजेक्शन लगाया। नतीजा एक चमकता हुआ मशरूब था जिसे आज हम सोडा या मस्नूई मिनरल वाटर कहते हैं। प्रेस्ली की यह दरियाफ्त ने सबसे पहले इसी शहर के मजहबी लोगों में बहुत तवज्जो मबजूल करवाई जहां वो रहता था और वक्त के साथ साथ ये पूरे मुल्क में फैल गई। एक शौकिया जर्मन कीमियादान जैकब श्वेब था जिसने मस्नूई मिनरल वाटर बनाया जो ज़्यादा खाने के बाद हमारा पहला जरिया था। यह दरियाफ्त यूरोप में फैल गई। श्वेब का बुनियादी मकसद एक ऐसी माया दवा तलाश करना था जिससे मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। श्वेब ने सबसे पहले प्रेस्ली के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए मस्नूई मिनरल वाटर बनाया और फिर चीनी और क्विनिन मिलाकर टॉनिक हासिल करने में कामयाब हो गए। जर्मन कीमियादान श्वेब की कुनियत से कायम होने वाली कंपनी कई सालों से मस्नूई मिनरल वाटर और टॉनिक दोनों की तैयारी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: थ्री ओ फोर एस में तुम्हारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
1: आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम तज़िया और क्यों के पेश किए जाएंगे।
0: हमारा ये प्रोग्राम हसबे मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा, जबकि मेज़बान है इमरान ओपल
1: और सगीर अहमद।

0: मजकूरा दावे की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी है, लिहाजा हुकाम ने शहरियों से चौकस रहने की अपील की है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब में हलाक शुदगान की तादाद 469 हो गई है। नेपाली हुकाम ने कहा कि सैलाबी पानियों की वजह से दर्जनों पुल मुनहदम हो गए, सड़कें मुतासर हुई और तलाश और रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं। हुकाम ने ऐलान किया कि 1300 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक नेपाल के सैलाब के बायस चीन के तिब्बत खुद मुख्तार खत्ते में 3 अफराद हलाक और 558 अफराद के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। सैलाब से कबल इलाके में पहले एक जलजला आया था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपने डेटा को अपडेट करते हुए कहा है कि 5.2 शिद्दत के इस जलजले का सबब ग्लेशियर का गिरना था।
1: रूस ने एक बयान में इंतबाह जारी किया कीव की जान से बरतानवी इसराइल के जरिए रूस पर हमलों के जवाब में यूक्रेन से बाह वाक बरतानवी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। रूसी वजारत खारजे की तर्जमा मारिया जखारोवा ने मास्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया बारह ये इंतबाह दे चुके हैं कि रूसी सरजमीन पर हमलों के लिए बरतानवी हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में यूक्रेन और यूक्रेन से बाहर मौजूद तमाम बरतानवी फौजी तनसीबात और आलात को निशाना बनाया जा सकता है। ज़ाखारोव ने तबील फासे तक मार करने वाले स्टॉर्म शेडो क्रूज मिसाइल कीव के हवाले को जारी करने को जारी यूक्रेन जंग में बताने की बराह रास्त शमूलियत का सबसे वाजिया सबूत करार दिया। उन्होंने कहा 2023 में यूक्रेन को पहली बार स्टॉर्म शेडो मिसाइल दिए जाने के बाद से बरतानिया के इस्तेमाल से मुतल सवाल के जवाब देने से गुरेज करता रहा। उन्होंने याद दिलाया कि मई 2024 में बरतानिया के उस वक्त वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने कहा था यूक्रेन खुद फैसला करेगा बरतानवी हथियार कैसे और कहाँ इस्तेमाल करने हैं। ज़ाहरा ने बरतानवी हुकूमत पर रूस को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देने की कोशिश जारी रखने का इल्ज़ाम भी आयद किया और दावा किया कि कोशिश नाकाम होने के लिए बनी है। ज़ाहरा ने बरतानवी रहने वाले शहरों से अपील की वो अपने इंतजाम के मुआंदाना इकदाम के नाकजी तबाहकुन नतज पर गौर करें।
0: कोलंबिया के मगरबी और वस्ती हिस्से में वाक़ तोलीमा में कई दिनों से जारी जंगलाती आग के बायस एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सदर अबेलार्डो डी ला एस्पेरेला ने अपने एक बयान में कहा है कि इस आग से कम अज़ कम 50,000 हेक्टेयर का रकबा मुतासर हुआ है, 2,600 से ज़ायद काश्तकारों और पैदा कुनंदगान का नुकसान हुआ है और माली नुकसान 134 अरब पैसों तक पहुँच गया है। डेला एस्पेरेला ने हवा और ज़मीन से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी होने की तौज़ीह करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इलाके को दोबारा बहाल करने के लिए एक जामे बहाली प्लान नाफिज किया जाएगा। दानिस्ता तौर पर आतिशज़नी की तरफ इशारा करते हुए सदर ने ऐलान किया कि तखरीबकारों को पकड़ने के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी में मुआवनत करने पर 50 मिलियन पैसों तक के इनाम का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुई। तो आइए सामिन बेंगू और सरदार और ताज की आवाज़ में एक तुर्की नगमा समाप्त फरमाइए।